0: இணைந்திருப்பது அன்னை வானொலியின் அலைவரிசைகளோடு. நேர்கள் இனி கேட்கலாம் மிடே நியூஸ்.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. US Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis and it's now their responsibility to honor and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
2: Karma Yogi Prarambh, jaise module se aapko apni zimmedariyan samajhne mein bahut sahuliyat hogi. Mera aapse aagrah hai, iska jyada se jyada labh uthayein. Aaj Bharat ka yuva duniya ke har kshetra mein अपनी पहचान बना रहा है. यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए. विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं.
1: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड दैट द वर्ल्ड इज ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ जर्नी. द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द कंट्री इज ऑल्सो पार्टनरिंग विद वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
2: Duniya Bharat ke yuvaon aur Bharat ki technological progress ko lekar bahut utsahit hai. Aaj duniya Bharat ki vikas yatra ka hissa banna chahti hai. Bharat bhi duniya ke alag alag deshon ke sath partnership kar raha hai. Iska uddeshy yahi hai ki Bharat ke yuvaon ko अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले.
1: मिस्टर मोदी एडेड दैट एवरी इंडियन इज वर्किंग विद अ कमिटमेंट टू मेकिंग इंडिया विकसित भारत बाय 2047 एंड टू अचीव दिस द कंट्री इज इन्वेस्टिंग इन सेवरल सेक्टर्स. द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड दैट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री.
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. ये संकल्प 2047 तक